0: अवसर दिखाई बिना रीति साय विलावा अभी लास्ट वीडियो पूरी ब्रेक का गाने आना और कुटुंब कलिन मंगोगलांट फिल्म साएगे न मता करना लेख वैनी न थोल ऐंदगी नीना पहासो दिने पैडे का क्या होए न आना पीरियड्स दवासोल टो मी थरंग सपोर्टिव पार्टनर की निकना वाटे हम्बा वैनी कहने इतामाई फिल्म आयो ओनम फार्मेसी के किन ओनम ग्रोसरी शॉप के किन सुपरमार्केट के किन ओगलांट फिल्म आए गान पलोन विशेष म कारण में तमाई ताम साधारण गान के तमाई मे पैड के वेलेद फलट है नहीं ते नहीं सा इसको लिया ने नंगे क्वेन पलोन एम ना ऑफिस या लेडी के ने क्वेन पलोन गैदरी नम के ने क्वेन पलोन कोहे उना अन्य वर इन मता केला स्टैंड बाय सैनिटरी नैपकिन से आ गान होंद पुरुद ऐति कर गान ए वगे में तमाई और दरन पलोन गान के टेन फिल्म आए मो ए वेडो एन थोरन विलव दिखाई ते सदाई
1: අලුත්ම කඩම මිලක් කසාකල ග්‍රීන් සුපර් විතින් හිතා ගන්න බැරි අඩම මිලකට දැන් පහඳ රසක් ඔබත් අතමෑවිත් වෙනස වටහා ගන්න ශාකා මාතලේ අතුරුගිරිය මුල්ලේරියාව නාරම්මල ගනේ මුල්ල ගම්පොළ කසාකල ග්‍රීන් සුපර් කසාකල සමූහ ව්‍යාපාරයේ වෙතින්
2: සහෙලි හැපිලි කියන්නකෝ ඔයාලගේ කෑෂ්බෑක් කතාව
3: ෆැබ්‍රිකේටර්ගේ කොටේෂන් එක ස්විස් ටෙක් එකට WhatsApp කරා
4: මිලියන 2000ක් දක්වා කෑෂ්බෑක් ලබා ගන්න ඔබේ ස්විස් ටෙක් ඇලුමිනියම් කොටේෂන් එකත් 0.76 7 වයි 7 18 WhatsApp කරන්න